त्रैवी क्रमादिचरितं विभुता स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वा सरशुद्धि महारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुपनादिकेण कूकद्रुमादिषु मनोहर बालिकानाम् आवाति मन्दमनिलसह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्नीयनेत्रयुगमुत्तम

तंत्री प्रकर्षम दुरस्व नयाति पञ्चा गायत्यनन्त चरितं तवनारदोऽपि भाषा समग्रम सकृत्क रचाम रम्यम् शेषाद्रि शेखर विभूतमसु प्रभातम् भृङ्गावणीचमकरन्दरसानुविध जङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्याच्युपान्त

श्रीमन्नभिषभदाखिलोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदि

श्रीनिवास जगदेशयैकसिन्धो श्रीदेवताग्रहभुजान्तरदिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीस्वामिपुष्करनिकाप्लवनिर्मलाङ्गा श्रेयोद्धिनो हरदि